0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారత కేంద్ర స్టూడియోలో సమయం సరిగ్గా 11 గంటలు. వార్తల ముఖ్యాంశాలు ఇప్పుడు మీరు వింటారు.
1: ₹5,00,000,000 గలత్ హాథో మే జానే సే బచే హై. అబ్ ముజే బతాయియే, జిన్కే ముఫత్ కి కమాయి బంద్ హో గయీ హై, వో క్యా మోదీ కో ప్యార్ కరేంగే క్యా? మేనే సహీ కియా కి నహీ కియా? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा. अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5,00,000,000,000 रुपये लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता. मोदी ने इसको रोका है. और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है. साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4,00,000,000 रुपये से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं. ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है. ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था. यानी साथियों, मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है. और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है. साथियों, बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है. रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ. इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है. इससे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई है. आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए. एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं.
0: मेरे इंतवरकु प्रधानमंत्री उपन्यास विनारू.

0: ఇది ఇవాళ సింగర్ స్పెషల్ హమ్మింగ్ క్వీన్ స్వర్లత గారి సినీ పాటల ప్రయాణం. మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తూ మీ అశోక్. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోలో సమయం సరిగ్గా 12 గంటలు. వార్తల ముఖ్యాంశాలు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है. 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी. इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशंस हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है. श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी.
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है. कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए. अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके. यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है.
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं. बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की. भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है. भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है. देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है. 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था. इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 75 वर्ष के थे. नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी.
2: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता. नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा. वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े.
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The four-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India." He said today, 5G connectivity has reached every district of the country. Mr. Modi added that there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India.
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
1: मुझे लोरी याद आ जाएगी, क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
0: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरियां।
1: हाँ,
0: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
1: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता है, तो कहां से रोल गाएंगी। तो वो ऐसे करती है कि मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती है, तो बच्चे उससे इससे आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
0: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। मोबाइल और ये सब
1: जाते हैं,
0: नहीं याद रहता है
1: जी।
0: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
1: जी।
0: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
1: जी
0: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
1: जी।
0: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें, और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
1: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने के मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
0: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती है, वो लिखें। और इसके अलावा
1: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
0: और सुना लीजिए, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
1: जी।
0: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आती
1: जी।
0: तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सबके दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
1: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
0: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस में नहीं है। हालांकि है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है। और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई, तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है, तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है और 2026 में ये दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना सब कुछ आंखों से ही तो होता है, लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है, कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात निकली कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती है, लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। ये छोटी छोटी बातें नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डाले। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंख की देखभाल, ये जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। अब आंखों से आंखों में बातें होती हैं और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म चिराग।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हम बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन जी, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं है, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे जी। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने
0: जी।
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज की
0: जी,
1: जिनका नाम छुटनी महतो है
0: जी।
1: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
0: जी। और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद अपने जीवन में महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सुना जी, यहाँ एक बात और बता रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम चलाई जाती है
0: जी।
1: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए
0: जी,
1: न कि भूत पिशाच के जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया, और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई, इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
0: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
1: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को ये भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
0: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
1: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था, बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
0: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है, और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था, उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है, और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई। ना ना, अब तो रिटायर हुई, ऑफिस की भी बंदिश नहीं। खुरपी, कैंची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई। गाना चल रहा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा
2: है। क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
0: जी।
2: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी कर सकती है
0: जी। एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
2: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही है,
0: पीछे छूटती जा रही है ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुनाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारी लोक संस्कृति की ऐसी धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता था।
2: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीखकर हम पता चला कि मोबाइल में रहे हैं गाना और लोरी फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
0: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
2: बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप
0: जी
2: मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदी के नारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके अपने बच्चे का नाम
0: उसने कि उसके नाम जोड़े जाते थे,
2: कहा किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
0: छिपी हुई
2: छिपी है
0: जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी भूल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी।
3: और फिर पारंपरिक गीत भी हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
2: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
3: ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
2: हाँ ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लीजिए और पारंपरिक गीत और इस पर एक जी। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
3: पसंद आएगा या नहीं।
2: जी
3: और इन ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
2: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी और कोई जो पटना बोलते पटोहा
3: जी,
2: तो उसको झूले को झुलाते थे और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
3: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही हैं।
2: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
3: बिल्कुल याद है।
2: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
3: और तो अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।

0: भाई देखिए सोनाली जी, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती है। और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती है। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी तो, और करना भी चाहिए तो, लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए। दादा दादी है,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं,
0: बिल्कुल जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ, एक सखी ने लिखकर भेजे।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर आए, हाँ। बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं
1: अभी दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं।

0: जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म की मंदिर जाती महिलाएं,
1: कुआ पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की
1: खाली मिट्टी
0: है जो मिट्टी पूजन करती है, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकहुली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं, तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल जी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है, समय मिलने पर ही मैं अपने शिष्य से बातें करती थी, सुलाते समय लोरियां तो जरूर स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है, रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए जैसे फिर क्या हुआ,
1: तो वो भी उन इसमें शामिल होंगे उसमें,
0: बिल्कुल वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहां पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा, चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुलाने और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ नानी, मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी,
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके
1: बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटूक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती है, और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी।
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो आ रही है
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो फिर बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कथक डांस स्कूल भी चला रही है, और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है। अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं।

0: अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
0: क्या बात है। एक सखी ने लिखा, मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। इतनी अच्छी उदाहरण है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ, जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
0: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता, जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही है, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
0: और अब गीत सुनते हैं
1: ये गाना।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देख किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्टर बात कर रहे हैं, उदय साहब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, तभी आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है। ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम?
1: मिस्त्री के साथ में बांधा बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्वधर्म संभाव बन के चलते हैं। और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है, जन्नत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे ऐसे है जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों के दुख दे रहे हैं, तभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश किया ये सबसे किया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी हूँ आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम दीदी।
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं।
1: नहीं, उसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा, तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेले हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए, गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर।

0: जान के बोल है तेरी याद आती है, मैम जी तो लाइने हैं, बोल दे इजाजत हो आपकी।
1: सुनाइए।
0: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले उसका कल भी उसके साथ है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिला श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खुंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गाँव, उसमें खंडगांव गाँव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते है। कोई वार नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते है, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंदा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फोन करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में हर टाँडा वस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही। सेहतनामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारे ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इससे जो महिला का जो तुम्हारा सखी सहेली है ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना।
1: ओ,
0: बहुत अच्छी,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर वहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारी जो भाई रहते धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना।
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती देश में। हाँ जी, जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी मेरी दीदी, हम ग्राम चिड़ाव कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ, मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप, संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है? जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूँ चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ, चलिए गाना बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: बंटवारा फिल्म का है दीदी, अरे वाह तेरे ढोला नैन मेरे
0: जागे रे जर। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी, आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कर रही हूँ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए?
1: यहाँ आज तो मौसम बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: उनकी गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है, तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना अखरोट का, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं।
0: अरे,
1: पत्थर पे तो, हाँ।
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: ये लगभग एक क्विंटल किसी को निकलता है, एक क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ से करते हैं?
1: हाँ, ये वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हाथ एडी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अब यही है, रोजगार,
0: बिल्कुल
1: मेहनत करनी पड़ती।
0: आपने समय निकाल कर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ हाँ, सही बात, सही बात। इससे सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते वो मैं सुनता रहता हूँ, आज के फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदल बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे। जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में। जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, जरा के ऊपर है, जरा जितने आए जितने। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते
1: हैं
0: या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना ब्रस्ट तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, चला अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते
0: हैं। जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है शरम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काले नगर से बात कर रहा हूँ, मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मेरे जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, मैं हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं भूले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीट भर्ती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे 50 साल से, स्कूल में चौथी में से था जब तक, तो आज तक लेके हम वीट भर्ती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं, एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी, मेरे जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा। दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा, हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, शिरकत की थी?
1: सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी, मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं, और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।
2: मैं

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुड़लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है, that is a +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे,

0: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం. సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారాలు ఢిల్లీ నుంచి ప్రసారం అవుతాయి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే ముఖేష్ కుమార్. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है. जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है. कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है.
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड.
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है. 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है.
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी.
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है. कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए. अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके. यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं. 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ. ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है. श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही. ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा. जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया. सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है. भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by V.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी

0: सिफारिश की गई है।
1: फ्रॉम 25,000 to 10,000।
2: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
0: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
2: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा न दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की

0: लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
4: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
3: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings.
4: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
3: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
5: आज टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबन करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
3: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
5: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain, isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkaren, technology companies, telecom operators aur financial institutions sabhi ko is framework se judna hoga. मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके.
3: Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the Digital India campaign has been the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence AI within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister was speaking to media after releasing the World Development Report 2026 titled The Promise of Artificial Intelligence today.
6: AI ka regulation kis tarah se ho?
7: Decision on how AI regulation can be done in the time to come has been made. In the next month, a consultation paper will be floated on AI safety, cybersecurity, benefits and harms of AI, and benefits of AI to everyone. Protection from harmful things like deepfakes. On the basis of this consultation paper, AI regulation will be formed later. Suggestions from industry regarding AI-based curriculum for students, youth and young people have been received. We have sent it to the Ministry of Education. The Ministry, industry and universities together can upgrade their course curriculum so that students who enter colleges today can benefit from AI.
6: AI ke liye jo benefit mil sakta hai, wo benefit mile.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Vishakhapatnam on the 12th and 13th of next month.
8: In the current year, after a record $863 billion of exports last year, when global growth is slated to come down to under 3%, international trade is expected to be soft we have set a challenge and decided we will look at $1 trillion of exports in the current year. That's almost 16% growth in a year in which international trade is expected to barely grow by 2.5 or 3%. And we are very confident that the current year will give an upward of 7% growth, maintaining the fastest growing large economy.
3: Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal today said the Cochin Shipyard Limited has received orders to build over 40 ships from the multiple countries including US, Germany and Norway. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Sonowal highlighted that the Indian shipbuilders are earning credibility across the globe in shipbuilding. He said such orders reflect growing confidence of the nations. This is Akashvani giving you the news.
9: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
3: Forty-two former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The letter highlighted that the special intensive revision of electoral rules is valid under Section 21(3) of the Representation of the People's Act 1950. They appeal to political parties to contest elections and not delegitimize them. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the Nari Shakti Vandan Adhiniyam.
10: In 2023, Parliament passed the Constitution 106th Amendment Act Nari Shakti Vandan Adhiniyam, marking a historic milestone in its national journey to foster equitable representation of women in public life at all levels of the federal structure. This landmark legislation reserves one-third of all seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. In his Independence Day address this year, Prime Minister Narendra Modi appealed to all political parties to end decades of delay and swiftly implement the one-third legislative reservation for women in Parliament and state assemblies.
11: आज पंचायतों में नगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था लेकिन किसी न किसी कारण से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूँ आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
10: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार धर्मशीला गुप्ता सेड दैट थ्रू दिस एक्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस।
12: नारी शक्ति वंदन अधिनियम
13: द नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज अ हिस्टोरिक स्टेप अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय एंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द way for the participation of half of the country's population in politics and policy making.
12: Ninayak bhagidari dene ka marg prashast kiya hai.
10: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, once implemented, women's representation will rise substantially in the Lok Sabha and state assemblies. It is a decisive step towards empowering India's Nari Shakti with a stronger voice in decision making and a greater role in shaping the nation's future. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: India has condemned the attack over the past few days targeting Abha International Airport and King Khalid International Airport in Saudi Arabia's Riyadh, which have resulted in deaths of 3 civilians and injuring 36 others. In a statement, the Ministry of External Affairs said the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive work that

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें जो बहुत ही आवश्यक होती है। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर सी बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
2: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है।
2: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास के हैं। इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष है सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा जो। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण है जैसे कि स्टंटिंग जिसे हम माटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए और हमारे लिए भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जैसे कहते हैं

0: रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
0: श्री अन्न, जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं, वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस, गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इनटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस, जो की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती है, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं। उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात हो, या फिर छोटी बच्चियों की बात हो, या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खानपान की क्या भूमिका है? और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग या कम से कम बच्चियां या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों?
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए एनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी, जिसे कहते हैं हम आमाशा में, और या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है, और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है। मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन सी, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं, कम से कम उसको 4:1, चार हिस्से अनाज में एक हिस्सा दालों का या नट्स का, जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड, उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और उसके साथ विटामिन सी वाली चीजें, अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टैबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में दो बार खाना होता है, तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है, तो गोली का भी अपना महत्व है, और साथ में एक संपूर्ण आहार इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो, या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में

0: सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी एक तिहाई अनाज हो सकता है मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है। बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर युक्त जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का और बहुत उसका, उनका हमें कम करके बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें। खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है जो कि बिल्कुल संभव है।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जनभागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: మధుర గీతాలు విన్నారు ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం. సమయం 11 గంటలు కావస్తోంది. వార్తా ప్రసారాలు ఢిల్లీ నుంచి ప్రసారం అవుతాయి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే భవతారిణి. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया. ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया. भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
5: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a written late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He also said the Digital India campaign has been at the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence AI within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister is speaking to the media after releasing the World Development Report 2026 titled The Promise of Artificial Intelligence Today. 42 former judges have signed an open letter to express concern over attempts to undermine India's Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. They said constitutional